0: अल्फा स्टूडियो, अल्फा स्टूडियो
1: FM Anupaha. FM Anu Hatarai Dasamata. Net FM. Divine Pura.
2: Udasana hai vinadi 45.

दिला तीन हरिट मधा है हतलिस पाए दी कमेंट सेक्शन एक हतलिस दहसे सीमा बहुकर नोन के अला नैवेद्य कमेंट तीस दाई तव दहदीना तव विना हरियट मिस्सा तीन वेडी अरगने अन्वाटने बैरी ने

कमेंट सेक्शन ने कमेंट भेज दी पंद्रहसक फार्टर रिएक्ट हमारे थी इन्हें कमेंट हैटर दहसक देने के लिए मंगवा डे कोला हमारे भेज दी और ने टारगेट के दीला दीने वाले आता रीन्ने पा